0: शुभ बचन
1: सर्वव्यापी राम संग रचन
0: जिन जाता तिसकी ये रहत
1: सत बचन साधु सब कहत
0: जो जो होए सोई सुख माने
1: कर्ण करावन हार प्रभ जाने
0: अंतर बसे बार भी ओही
1: नानक दर्शन देख सब मोही
0: आप सत किया सब सत
1: तिस प्रभ ते सगले उत्पत
0: तिस भावे ता करे विस्तार
1: तिस भावे ता एक ओंकार

तुम आपे करें सो होई, तुदे आपे सृठ सब उपाई जी, तुदे आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सहायका जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मैडा साई, जो तो भावै सोई थीसी, जो तू दे सोई हों पाई रहाओ। सब तेरी तू सब नीत आया, जिसनू कृपा करहे तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप भी छोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ

इतनी सेवा प्रदान कर लीजिए, कीर्तन कर दे आप लादे बाबे बख्श ने भाई जसविंदर सिंह जी दिहाड़े वाले आप जी लड़ीवार बाणी कथा राय जोड़ने ना पासों पारस का सरन करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गोर बाणी कह सेवक जन मन

महापुरख की निज घर वासा होए बेशुमार अथा अगणत अतुला ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बोला सतनाम

कारे आपन डह खड़ी तका मैं मन चाओ कनेरा राम मन चाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा दर्शन देख पई ने केवल जन्म मरण दुख नासा सगली ज्योत जाता तू सोई मिलया पाए सुपाए नानक साजन काओ बल जाइए साच मिलै कर आए सो कहो टल गुर सेवियै अहनस सहज सुपाए दर्शन परसै गुरु कै

प्रभ साथ अष्टपदी। जह मात पिता सुत मीत ना पाई, मन ऊहा नाम तेरा संग सुहाई। जह महा पयान दूत जम दलय, तह केवल नाम संग तेरा चलय। जह मुस्कल हो

त्रापै पेखे अनेक अगण नहीं बुझय कोट उपाव धर गय नहीं सिजय शूर सनाही उपयाल मोह व्यापय माया जाल अवर करतूत सगली जम डान गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जपत दुख जाय नानक बोलै सह सुपाय।

सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम मह उद्दम पला हर का नाम जप हो जीय सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जास सुन रसन बख

तौ समझाय पूरा कहाँ बिहन पद गावे गोंग जतन कर तौ पिहि सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तू हाँ उस गवन करतार करना में दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाई सो आवे न चीत जो बैराई तास्यो प्रीत बरुआ के गृह भीतर बसे अंत केल माया रंग रस है त्रिव कर मान मणे प्रतीत काल न आवे मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ द्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राह खिले हो आपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा में सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा तू चेते ऊंचा भगवंत सगल समय

माया मिथ्या राज जो बनता हनुमाल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रात हस्ती असव बहतरा मिथ्या रंग संग माया पेख स्तव मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या सी ऊपर करत गुमान अस्थिर भगत साध की सरन नानक जप जप जीव हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिर है

पेखे बिस्माद देह प्रसाद बोलहे अमृत रसना देह प्रसाद सुख सहजे वसना देह प्रसाद हत कर चल है देह प्रसाद संपूर्ण फल है देह प्रसाद परम गत पावे देह प्रसाद सुख सहज समावे ऐसा प्रभ त्याग बरकत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो देह प्रसाद तू प्रगट संसार देह प्रभ को मूल अमन हो बिसार देह प्रसाद तेरा प्रताप रे मण मूढ़ तू ता का जाप देह प्रसाद रे कार्ज पूरे ते सह जान मन सदा हजूरे

साध प्रभु बने आई, साध के संग न कब हुतावे, साध के संग सदा सुख पावे, साध संग बहत गोचर लहे, साधु के संग अजर सहे, साध के संग बसे थानी उचे, साधु के संग महल पहुचे, साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म, साधक संग पाए नाम निधान, नानक साधु कह कुर्बान, साधक संग सब को

बरसावे। सासंग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, सासंग अमृत गुण गायन। साध के संग सर्वथान गम, नानक साध कै संग सफल जनम। साध के संग नहीं कह काल, दर्शन पेड़ होत निहाल। साध के संग कलुहत हरे, साध के संग नरक पर हरे। साध के संग ईहा ऊहा सुहेला, साध संग बिछरुत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावे, साध कै संग ना बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध रिद बसे, नानक उदरै साध सुन रसै। साध के संग सुनो हर नाव, साध संग हर के गुण गाव। साध के संग न मन ते विसरै, साध संग सर पर निस्तरै।

सदा बेअंत साध की शोभा उठी साध की शोभा मुहते मुहती साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभेद न पाही श्लोक मन साचा मुख साचा सोय वरना पेखे स्मिन कोय नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होय अष्टपदि ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमले ले ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व का सुख ब्रह्म ज्ञानी के

भाव का सह सुभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन हुए प्रगाह, जैसे तारी ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही मान। ब्रह्म ज्ञानी उचते ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे, नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल क्रीनाथ, ब्रह्म ज्ञानी जीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब प्रमाया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पाया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपर्यास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी पारोपकार उमाह। ब्रह्म ज्ञानी के नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला।

से प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी के नाम परिवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सा जागत, ब्रह्म ज्ञानी अह बुद्ध आगत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदानंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख साय निवास नान, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म

ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी का बाल बाल जाइये, ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर नानक, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की

ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मृत कावण बखान है, ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञानी कामतर पारणान, ब्रह्म ज्ञानी कौशदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता,

पार ब्रह्म कर्ता विनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पहनहाल श्लोक उत्त करे अनेक जाने अंतर पार वार नानक रचना प्राव रति बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट होय पुजारी कई कोट अचार व्यवहारी कई कोट पैतीसवासी कई कोट बन ब्रह्म उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीशर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कब काम विचार है।

अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपे गातम निकोर कई कोट पर दर्ब कोहिर है कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया श्रम माह कई कोट प्रदेश प्रमाह है जित जित लाभ हो तित तित लगना नान करते की जान है करता रत्न कई कोट सिद्ध ज्योति जोगी कई कोट राज रस भोगी कई कोट पंखी सिर पे पाए कई कोट पाथर वृख ने बजाए कई कोट पवन पानी वह संतर कई कोट पावन पानी बै संतर कई कोट देश भू मंडल कई कोट ससियर सूर नक्षत्र कई कोट देव दान इंद्र सिर शतर सगल समग्री अपने सूत धार नानक जिस जिस भाव तिस तिस निस्तार

कई कोड़ काले थक पाहे, कई कोड़ किए तनवंत, कई कोड़ माया मह चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किछ प्रभ कै हाथे, कई कोट पै बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी।

अविनाश कई कोट मांग है सात संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनका होए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा तन तन कई कोट खानी हर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होए अवतार कई जुगत कीनो विस्तार।

सोई करे। अनजानत भिख्या महरा तेरे जानत अपने आप बते, पर मैं भूला दह दिस तावे, निमुख माहे चार कुंड फिर आवे। कर कृपा

प्रगटावे। त्याग अपनी करे बख्शी दा काले खाना गणे जगदीश जियो पिण सब तिसकी रास घट घट पूरन ब्रह्म प्रगास अपनी बण ते आप बनाई नानक जीवे देख बडाई इसका बलना सुहास करण करावन सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस भाव सोई फुन थियो कबहू नित में बसे कबहू सो घर खरंग हसे कबहू निंद चिंद व्यवहार कबहू काश प्याल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक क्या मिलावन हार कबहू नृत करे बव पात कबहू सोए रह दिन रात कबहू महा क्रोध विकराल कबहू सर्व की उतरवाल

पला पला पलात्र रूप सुंदरय पार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी काट काट सुनी श्रवण बखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत सरन जो जन परे सोजन उदर निहार संत के निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदि संत के दुखन आर जा कटे संत के दुखन जमते नहीं छुटै संत के दुखन सुख सब जाय संत के दुखन नरक में पाए संत के दुखन मत होए बलीन संत के दुखन सो बातीन संत के हते का रखे न कोई संत के दुखन थान प्रहट होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक पीहि तारै संत के दुखन ते मुख पावै संतन के दुखन काग ज्यों लावै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए संतन कै दुखन तसनाम जले संत के दुखन सब को चले संत के दुखन ते सब जाए संत के दुखन नीच निचाए संत दुखी कथा को नाहे नानक संत पावे तावे पी गत पाहे संत का निंदक महाताई संत का निंदक खेण टिकन न पाई संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राजतहीन संत का निंदक दुखी आर दीन संत के निंदक का सर्व रोग संत के निंदक सदा वियोग संत के निंदा दुख में दुख नानक संत पावे ता उसका पी होय मुख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को डान लागे संत के दुखी को सब त्यागे संत का दुखी महाकारी संत का दुखी सदा विकारी

नहीं त्रापे। संत का दुखी छुटे इकेला, ज्यो बुआर तेल खेत माहे दुहेला। संत का दुखी धर्म तेरा, संत का दुखी सद मिथ्या कहत। कीर्तन दुखा तुर ही पया, नानक जो तिस पावे सोई थया। संत का दुखी बिगड़ूप हो जाए, संत के दुखी को दर गए मिलाय सजाए। संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए। संत के दुखी की पुजे न आसा, संत का दुखी उठ चले न आसा। संत के दुख न त्रिसटाए, कोई जैसा पावे तैसा कोई होए। पया कितना मेटे कोई, नानक जाने सच्चा सोए। सब कर तिसके ओह करने हार, सदा सदा तिस को नमस्कार। प्रभु की उहतद करो दिन रात, सहते आवो सास गिरास। सब

आवे जाए। ऊच नीच तिसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेख करे एक रंग। नाना वेद कीनो विस्तार प्रभ अविनाशी अहंकार। नाना चलत करे खिन माहे पूर रहे ओ पूर्ण सब ठाए। नाना विद कर बंद बनाई अपनी कीमत आपे पाई। सब कर तिसके सब तिसके ठाओ। जप जप जीव नानक हर नाओ। नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। नाम के तारे सिमरत वेद प्राण। नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान। नाम के तारे अंगास पाताल। नाम के तारे सगले उकार। नाम के तारे पुरिया सब पवन। नाम के संग उदरे सुन श्रवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए। नानक चौथे पद में सो जनगत पाए। रूप सत जा का सात स्थान। रूप सत जा

निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सतनाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत जन जा के हृदय प्रवेश सत निरत बू जय जय कोय नाम जपत ताकि गत होए आप सदकियां सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी शरीर सुगर ने हार वरना बूझ करते विचार करते कि मित न जाने की नानक जोत करते कि मित ना जाने की नानक जोत भाव सोवरतिया बिस्मण बिस्म पै बिस्मवाद जिन बूझा तसाया स्वाद प्रभ के रंग राज जन रहे गुर कै वचन पदार्थ लहे

करहे भगत आत्म के चाय प्रभु अपने सिंह रह समाय जो हो आहो सो जाने प्रभु अपने का हुक्म छाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कहे न जानो आठ पहर प्रभु से जूरे कहो नानक से जन पूरे।

ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म जन जन मह पार ब्रह्म कै आप नहीं कह भरम सहस सियाणप लया न जाय नानक ऐसा गुरबर भागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गात निर्मल रीत भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगे गावे सुन कर बचन करन आगाने मन संतोख आत्म पतियाने ने

नाम हरवाथ। एह तन संच हो वो भगवंत समझना का निर्मल मन ते कास राख मन वाहि सर्व रोग नानक मिट जाहि। जिस धन कहो चार कुंठ उठतावे सो धन हर सेवा ते पावे। जिस सुख गाओ नित माछे मीद सो सुख साधु संग प्रीत।

आकार हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई

मन मन केते केते रतन समंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरेंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया ना जाहे जे को कह पिछै पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन वद तिथे घड़िए सुरा सिदाकी सुद।

अभय है, अजीत है, अभीत है, त्रमान है, निधान है, त्रभर्ग है, सर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अभूत है, अपर्ण है, अगंज है, अभंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, अर्भीक है, अतंध है, अबंध है, निर्भूज है, सूज है, अकाल है, अजाल है, अला है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, दर्शरीक है, निर्लम्ब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अभूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, कर्म है, अपर्म है, अजीत है, पीत है, अबा है, अगा है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, उजंग प्रयात शांत नमो सर्वबाने समस्ती निदाने नमो देव देवे अपेखी अभेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व भौणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो भान भाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो भान भाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो भान भाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परभंगी परमाथे समस्ती विभूते कलंक मनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेशं परम रूपे नमो जोग जोगेशं परम सिद्धे नमो राज राजेशं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षीय परमीय भोगीय भुगते नमो जोग जोगेशं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देव सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाहहंग नमो भूपूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमो संसराने नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सचदानंद सर्वंग प्रणासी अनुपे अरूपे समस्तोल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता अदो उर्दर्दंग अगंग ओघर्ता परंग परंग परमेश्वरंग प्रोजपालंग सदा सर्वदा सिद्धाता दयालंग शेदीय भेदीय नामंग कामंग समस्तो पराजी समस्तामंग तेरा जोर चाचरी चंद जले है थले है पीता पे है प्रभु है अजू है देश है भेस है भुजंग प्रयात छंद अगाध्य अबाध्य आनंदी सुरूपे नमो सर्माने समस्ते निधाने नमास्तनाथे नमास्तमंग परमाथे नमास्तमंग गंजे नमास्तमंग अपंजे नमास्तमंग अकाले नमास्तमंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वग्रसं नमो सर्वरंगे तर्भंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समसंग प्रसजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धंग निवासी चरपट छंद द्वाप्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अल्ला कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग भाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग तरानं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेहुं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल छंद त्व प्रसाद आदरूप अनादमूर्त अजोन पुरख अपार सर्वांतरमान देव भेव आद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वगोपन काल जतर ततर विराज भूत रूप रिसार नाम ठामना जात जागर रूप रंग ना रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद अशेख देश और न भेज जागर रूप रेख ना राग जतर ततर दिशा भैसा हो फैलिव अनुराग नाम गां विहीन बेगताम है जाय सर्वान सर्वतर मान सदैव मानता है एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक दे बिना जाने जे वेद और कतेब रूप रंगना जात पासो जाने के जेब तात मातना जात जागर जन्म मरण विहीन चगर बकर फिर छत्र चकमानी पुरतीन लोग चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आदेव नाद मूर्थाप्यो सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरुख अपार सर्व सर्व रचियो स्वयं भव गण पंजनहार कालहीन कला संयुक्त अकार पुरख अदेश धर्म धाम सो परम रैत अभूत अलख अभेश अंगरांगना रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्ताय काम आप रूप अमीक अनुसत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्वभंजना दुर्भ असूत अंगहीन अभंगनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व गायक सर्व गो प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वतेन भेख सर्व शास्त्र न जाने जे रूप रंग अरेख परम वेद पुराण जाके नेत भागत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवहि वचित मद भाग।

गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय काम अद्भुत प्रचंड मिथगत अखंड आलस्य कर्म आदृश्य धर्म सर्वापरनाढ़ आन डंड बाढ़ चाचरी छंद त्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरी निर्नामे कामे भुजंग प्रयात छंद चतुरचक्र करता चतुरचक्र हरता चतुरचक्र दाने चतुरचक्र जाने चतुरचक्र वर्ती चतुरचक्र परती चतुरचक्र पाले चतुरचक्र पासे चतुरचक्र पासे चतुरचक्र वासे चतुरचक्र माने चतुरचक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पितर न गर्मंग न गाये अजनमंग अजाये न चित्र न मित्र परे पवित्र प्रतिश दिश आदृश अकृसा भगवती छंद त्व प्रसाद कथते के आच दिशा के आप जबेसा के आगंज कर्म के आप हंज भरम के आप जलोके के आद शोक के अवधूत वर्ण के विभूत करने के राजम प्रमा है धर्मंग तुझा है के आशोक वर्ण के सर्व अपर्ण के जगतंग कृति है के शत्रंग क्षत्रिय है के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुभव अनुपे के आद अदेव के आप अभेव है के चित्रंग विहीन के एक अधीन के रोसी रजा के रही मेरे हाके के पाक व्याव के गैबुल गैब है के अफुल गुनाह है के शाहन शाह के कारण करिंद के रोजी दहंद के राज कर हिम के कर्मंग करीम के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र बान के सर्वत्र दान के सर्वत्र गौण के सर्वत्र पावन के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राजा है के सर्वत्र साजा है के सर्वत्र दीनना है के सर्वत्र लीनना है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पुख है के सर्वत्र त्राणे के सर्वत्र प्राणे के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप है के सर्वत्र थाप है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग करीमे के परमंग फहीमे के आगल अलामे के साहिब कलाम है कुशलन वजू है तमाम रजू है मेसुल सलाम है सलीकुत मदाम है गनीमल शिकस्त है गरीबल फरस्त है बिलंदुल मकान है जमीन उल जमान है तमीजुल तमाम है रजुल निधान है हरीफुल अजीम है रजायक यकीन है अनेकुल तरंग है भेद है भंग है जीजुल निवाज है गनीमल खराज है दुर्ग स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है भेदी अनूप है समस्तो बराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सदाम है सदैव अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है उभंगा द्रुपे नास रूपे नंगी नामे त्रिभंगी त्रिगामे त्रिभृगम त्रिभृगम त्रिभाते अगंजे अगाते सुभंग सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिभुग स्वरूप है अशिज है अशूत है के नरकंग प्रणास है प्रथुल प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुग स्वरूप है प्रजुक्त अनुभ निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप प्रजुक्त अनुभ चाचरी छंद अभंग है।

इस हर तन का शाह हर आप है संतो, जिसनों दे सो हर तन लद चलाई। इस हर तने का टोटा कदे न आवई,

काम, महाराज कैसो सहाई हर को ना। फिर महाराज गुरु अर्जन साहब ने 12 एग्जाम्पल, 12 उदाहरण दितियां। कहन लगे बूढ़त को जैसे बेड़ी मिलत, बूजत दीपक मिलत, तिलत जलत अग्नि मिलत नीर, जैसे बारक मुखे खीर, जैसे रण में सखा परात, जैसे भूखे भोजन मात, जैसे किरख बरस मेघ, जैसे पालन शरण सिंह। 8 गरण मुख नहीं सर्प तरास, सुआ पिंजर नहीं खाए बिलास, जैसे आंडो हृदय माए, जैसे दानो चकी दराए। बहुत उपमा, बहुत उपमा थोर कही, हर अगम अगम अगाध तुई, ऊच मूचो बहु अपार, हर नानक सिमर नानक तरिये सार। 12 उदाहरण दितियां। महाराज कह लगे ऐसो सहाई हर को नाम, साध संगत पज पूरन काम। इस तरह सहायता करता है जिवें डुबदे होए नूं बेड़ी मददगार बन जाती है। बूढ़त को जैसे बेड़ी मिलत, हलत पलत हर होए सखाई। परलोक विच नहीं, लोक विच भी सहायता करता है। किते तू डुब रहा होवे ते जिवें डुबदे नूं बेड़ी सहारा बन जाती है, इस तरह परमात्मा दा नाम तेरा सहारा बन जाएगा। बूजत दीपक मिलत तिलत, दीवा बुझ रहा हो, तेल मुक्कण करके ते दीवे च एक पली तेल दी होर पा दईए ते दुबारा टैक पैंदा। जदों तेरी जोत आत्मक जीवन दी बुझण दे नेड़े होवे, तू सिमरन करन लग पै, तेरी आत्मक जोत दुबारा जग जाएगी। आखां जीवां विसरै मर जाओ, इस तरह मददगार हुंदा। बूजत दीपक मिलत तिलत, जलत अग्नि मिलत नीर, जिवें बलदी हुई अग विच पानी पाईए ते अग बुझ जांदी, इस तरह तेरे अंदर क्रोध दी अग बले, तृष्णा दी अग बले, ईरखा दी अग दे भांबड़ मचण, ते तू गुरु शब्द नाल जुड़ जाई, तेरे अंदरों ईरखा दी अग बुझ जाएगी, तृष्णा दी अग बुझ जाएगी, क्रोध दी अग अग्नि निवार निवर जाएगी। जैसे बारक मुख है खीर, छोटा बालक भुख लगी है, ये भी रसना तो नहीं कह सकता मां मैनू भुख लगी है। भुख का इजहार रो के करता है, जिवें वो बच्चा भुख का इजहार रो के करता है ना गुरमुखो, इस तरह जदों तू दुखां तो विचलत होके रोवे ते जिवें रोंदे हुए बच्चे दे मूंह विच मां दुध पा देंदी है, वह चुप कर जांदा है, इस तरह तू सिमरन दी निपल मूंह विच पा लई, तेरा रोना दूर हो जाएगा, दुख दूर हो जाएगा, तू आपे चुप कर जाएगा, तेरे रोणियां नूं हासियां विच रूपांतरित कर देगा सिमरन। बारक मुख खीर, जैसे रण में सखा परात, जैसे भूखे भोजन मात। मैदाने जंग विच जिवें भरा भरा दा मददगार हुंदा है, इस तरह मुसीबत विच नाम तेरा मददगार होवेगा। जिवें भुखे पुत्र नूं मां प्रशादा छकांदी है, प्रसन्न हुंदी है, इसे तरह तेरा परमात्मा मददगार होवेगा। सुकदी हुई खेती ते अचानक मीह पै जाए ते जिवें हरी हो जांदी है, जदों तू अंदरों सुख सड़ जाए, आत्मक जीवन तेरा सुक जाए, उदों सिमरन उहनूं दुबारा हरा भरा कर देगा। जिवें किसे शरण सूर दी संगत विच डर मुक जांदा है, इस तरह निरपौ जपै सगल पौ मिटै, तेरे डर दूर हो जाणगे। 8 उदाहरण हो गईआं। 9वीं 10वीं
11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ।

बंधन पौ पागा कह कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी तुम कर लाख कोट असव हस्ती हम कर एक मुरारी। उचक्का नेड़ ना आवी जम जगाती डंड ना लगाई दूजे पासे साकती पाप करके बिखिया धन संचया तिना एक वेख नाल ना जाई। साकता ने मनमुखा ने पाप कर करके कठा कीता एक पलांग भी उन्हां दे नाल नहीं जांदा। हलते विच साकत दुहेले ऐथे भी ल्यो ल्यो करत फिरे सब लोग तह कारण व्यापे बो शोक लक्ष्मी बरसों जोले बुलावे शोक मिटे सभी सुख पावे। वह इथे भी ल्यो ल्यो ही करते फिरते ने ते हथों छुड़क गया जदों इथों जांदे ने उदो सारा इथे धरिया तराया रह जांदा। अगे पलत साकत हर दरगह ढोई ना पाई ते अगे परलोक विच साकत नूं ढोई नहीं प्राप्त हुंदी क्योंकि बंदगी कीती नहीं हुंदी। इस हर धन का शाह हर आप है संतो जिस नूं दे सो हर धन लद चलाई। पर भाई इस धन का शाह वो आप है जिदे ते तरस करे पूरे गुरु राही उहनूं इह दात बख्शिश करदा है। इस हर धन्ने का तोटा कदे इस पासे कोई तुर पवे ना दूजे कारोबार विच ते रिस्क है ना भी फेल ना हो जाइए इहदे विच कोई फेल हुंदा ही नहीं गा। कोई इहदे विच जिहड़ी मूल पूंजी उहदे डुब्बण दा प्रिंसीपल अमाउंट जिहनूं कहिंदे उहदे डुब्बण दा कोई डर नहीं हुंदा। बैठ गए जप लिया सुरत जुड़ गई ते सार्थक ना जुड़ी ते तजर्बा सही। इस वास्ते इहदे विच तोटा है ही कोई नहीं। जन नानक को गुर सोझी पाई हे भाई गुरु ने यह गल मैनू चंगी तरह समझा दी केड़ी जेड़ी उपरले छे पद्यां विच महाराज ने समझाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद एको ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां राग रतन परिवार परियां शब्द गावन आईया शब्दोता गावो हरी केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा काज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किच है जिस दे सो पावे सदा शिव सलाह तेरी ना मन वसावे नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कै नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा साब गवाइया कर शांत सुख मन वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दिया ए वडे आईया कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभाग है घर सुभाग है शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर

आ जाए। मन तो वो शब्द लागो अरस्यो रहो चित लाए, कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजे सहसा विजाए। जियो मैले बारों निर्मल, बारों निर्मल जियो ता मैले, तिनी जन्म जुए हारिया। हे तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया, वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे ज्यो बेतालिया। कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे, तिनी जन्म जुए हारिया। जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो, निर्मल सतगुर ते करणी कुमाणी कूड़ की सोहे पहुंचे नाही मनसा सच समाणी। जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे, कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले। जे को सिख गुरु सेती सनमुख वह होवे ता सनमुख सिख कोई, जियो रहे गुरु नाले। गुर के चरण हिरदे त्याए अंतरात्मै समाले, आप छड़ सदा रहे परणे गुर बिन अवरना जाने कोए। कहे नानक सुनो संतो सो सिख सनमुख होए, जे को गुर ते वे मुख होवै बिन सतगुर मुक्त ना पावै, पावे मुक्त ना होर थै कोई। पुछो बबेकी आ जाए अनेक जूनी परमे आवे, बिन सतगुर मुक्त ना पाए फिर मुक्त पाए। लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए, कह नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त ना पाए। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी, बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। जिनको नजर कर्म हो वे हिरदे ते नाम समाणी, पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जप्यो सारंग पाणी। कहे नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी, सतगुरु बिना और कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे, कच्ची आख वखाणी। हर हर नित करे रसना, कहा कछु ना जानी। चित जिन का हिर लया, माया बोलन पहर वाणी। कहे नानक सतगुरु बाजो और कच्ची बाणी, गुर का शब्द रतन हीरे जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा हो सुमाओ, शब्द सेती मन मिलिया सचे लाया भाऊ। आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए, कहे नानक शब्द रतन हीरा जित जड़ाओ। शिव सकते आपे उपाए, कह करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आवेख गुरमुख से बजाए, तोड़े बंधन होवै मुक्त शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनु आप करे सो होवे किस स्यों लवलाए। कहे नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए, सिमर शास्त्र पुन पाप विचार दे। तत्ता सारण जानी, तत्ता सारण जानी गुरु बाजो, तत्ता सारण जानी तेही गुणी संसार भ्रम सुता। सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते, से जन जागे जिन्ना हर मन वसया बोले अमृत बाणी। कहे नानक सो तत पाए, जिसनु हर दिना जिसनु हर लिव लागे जागत रहन विहानी।

तू जग मैं आया। हर आपे महता आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया तन चलतो अल चलत नदरी आया। कहे नानक सरिट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग मैं आया। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनियार मंगल गाओ सखी ग्रह मंदिर बनियार गाओ मंगल नित सखी है सुख दुख ना व्यापे गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना फिर जापे। अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो। कहे नानक प्रभ आ मिलिया करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया। के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया। कहे नानक इहो शरीर प्रवान होआ जिन सत गुर स्यों चेत लाया। हे नेत्रो मेरो हर तुम मैं ज्योतरी हर बिन वरना देखो कोई। हर बिन वरना देखो कोई नदरी हर निहालिया वे संसार तुम देख दे हर का रूप हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक हर बिन वरना कोई। कहे नानक एह नेत्रे अंध से सतगुर मिलै देव दृष्ट होई। हे सरवण हो मेरे हो साचे सुनने नो पठाए। साचे सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी। जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस माणी। सच अलख वडाणी ताकि गत कही न जाए। कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो साचे सुनने नो पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया। वजाया वाजा पौन नौ दुआरे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए पावनी एक ना दसवां द्वार दिखाया। तहे अनेक रूप नाव नाव निद सिद्धांत न जाई पाया। कहे नानक कर प्यारे जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया। यो साचा सोहिला साचे घर गावहु। गावहु ता सोहिला घर साचा है जिथै सदा सच ते आवै। सचो ते आवे जां तुद भावे गुरमुख जिना बुझावे। एहो सच सबना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावे। कहे नानक सच सोहिला सचे घर गावे। आनंद

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

ऐसे माधु, हम ऐसे तुम ऐसा माधु, हम ऐसे तुम ऐसा माधो, हम ऐसे तुम ऐसा माधो, हम ऐसे तुम ऐसा माधो, हम ऐसे तुम ऐसा, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तुम दाता, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तुम दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता, माधो हम ऐसे तुम ऐसा माधो, हम ऐसे तुम ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकर देसा, हम पापी पाप खंडन, नीको ठाकर देसा, तुम सब साजे साज नवाजे, जियो पेंड दे प्राणा, तुम सब साजे साज नवाजे, जियो पेंड दे प्राणा, निर्गुण यारे गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेहरबानी, निर्गुण यारे गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेहरबानी, तुम करो भला हम भलो न जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम करो भला हम भला न जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख बिधाते, तुम राखो अपने बाला, तुम सुखदाई पुरख बिधाते, तुम राखो अपने बाला, तुम निदान अटल सुल्तान जी जन सब जाचे, तुमने दान अटल सुल्तान जी जन सब जाचे, कहो नानक हमें हे हवाला राख संतन के पाछे, कहो नानक हमें हे हवाला राख संतन के पाछे, कहो नानक हमें हे हवाला राख संतन के पाछे, अगे बोलो से तुम ऐसा दूजा शब्द कटो एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, चाचरी शान गोविंदे मकंदे उदार अपार हरियां कारियां नाम में अकाम, गोविंदे मकंदे उदार अपार हरि करि नाम में अकाम, टाडी दर्पा मंगना अंदर कदे न छोड़, टाडी दर्पा मंगना अंदर कदे न छोड़, मन रत्ता गोविंद संग सत भोजन जो, मन रत्ता गोविंद संग सत भोजन जो, प्रीत लगी हर नाम सो ए हस्ती को, प्रीत लगी हर नाम सो ए हस्ती को, राज मिल खुशियां कणी चाहे मुख न मोड़, राज मिल खुशियां कणी चाहे मुख न मोड़, ढाडी दरपा मंगना अंदर कदे न छोड़, ढाडी दरपा मंगना अंदर कदे न छोड़, नानक मन तन चाओ ए नित प्रभ कोल, नानक मन तन चाओ ए नित प्रभ कोल, सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर शुभ चिंता लाए हमारी, सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर शुभ चिंता लाए हमारी, धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव साहब, तू ही निरंकार तू सदा सलामत न कर, तू ठाकर उच्च भगवान, नानक की प्रा बेनती अपनी भगती लाए, मांगो दान ठाकर नाम, धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव साहब, तू ही निरंकार तू सदा सलामत न कर, तू ठाकर उच्च भगवान, नानक की प्रा बेनती अपनी भगती लाए, मांगो दान ठाकर नाम, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, कोट कोट प्रणाम, भुल चुक माफ, तेरे चरण कमल पास, बहुत बहुत धनवाद, नानक नाम चढ़ दी तेरे भाणे स्वादा पर, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु।

प्रतिपालक नायक हसु हमारे निम्क निम्क तुम ही प्रतिपालु हम मार्ग तुमरे तारे तुमरी शरण तुम्हारी अस तुम ही सजन सुहेले राखो राखो निहार दयाला नानक करके गोले राखो राखो निहार दयाला

है ना, हे कामंग नरक विश्रामंग, बहुत जोनी परमावणे, ये जूना च लै जाते सारे सानू। तो जिदे उत्ते लोभ होया उहदी तो उधार नहीं, मन की कुत्ते नाल देती है। एक तो कुत्ता होंदा ना, तुसीं बड़ा प्यार करदे हो, घर च रखदे हो, एक कुत्ता हलका हो जांदा वा। हलका कुत्ता किसे ने रखिया कदी घर? उहनूं मार दिंदे है ना, जो कूकर हलका आया धावे दहद सजाए। तो जो मन साडा लोभी बन जाता, लोभी जंत ना जाना ही भख भख सब खाए, ये नहीं फिर वेंदा कोई उच्चा नीवा माड़ा मोट है ना। लोभ लहर इनू कहिंदे, लोभ कित्थे लै जांदा, लोभ लहर सब सुहाण हलके हलके सभे बिगाड़े। ये लोगों के फिर अपने रिश्तेदारां दे हक मारने शुरू कर दे। लोभ लोभी का वसा ना कीते जे का पार वसाए, कहते जे तू भवजल पार करना तो लोभी का वसा ना करी। इसलिए आओ आप जो कुछ भी लिखे पहला डिलीट करके तो उत्थे ये वसाइए, वाहिगुरु सच लिख नाम सलाह लिख। हुण लिखना कहना वा तुसीं थक जाने, सारे लिख अंत ना बारा बार, बारंग बार बार प्रभ जपी, थकिया ना करो। इत्थे आके चढ़दी कला च रहोगे तो चढ़दी कला च हो जाएगी तुहाडी, जे ढेंदी कला च जाओगे तो ढेंदी कला। चढ़दी कला च पंथ खालसा ढावे ढेरी न, थकना नहीं गा। हुण वेखो कम ते जांदे हो ना तुसीं है ना, ते उत्थे पता की कहिंदियां बीबियां एमाजोन च, जे दे 10 घंटे लगे आ ते 2 होर दे दिओ है ना। 10 घंटे दी शिफ्ट लग गई आ ते तरले कढ दियां उहनां दे, उह जिहड़े हुंदे आ चार, भी 2 घंटे होर मिल जाण ना सानूं ते धन वध जाएगा है ना। इदां ही है ना, ओवर टाइम लाउंदे आपां ते इत्थे अहीं कहिआ वी 1 घंटा ज वध लवाईए, कहिंदे नहीं है ना, इत्थे थक जाने आपां। ते इह तन नाल जाणा वा, उह तन इत्थे रह जाणा वा। वेखो किन्ने भरम च पै गिआ मन साडा। जिस वखर को लैण तू आया, राम नाम संतन घर पाया, तज अभिमान लिहो मन मोल, राम नाम हिरदे में तोल, लाद खेप संता संचाल। आ तुहाडी खेप कठी हो रही है, जिनू कारगो कहिंदे ने। खेप पता किनू कहिंदे आ? खेप जदों सारिआं दी तुहानू इक जणे नू मिलदा वा, आ जिन्ने बैठे तुसीं उह इक जणे नू मिलदा इन्ना धन है ना। हुण जिहड़ा उत्थे कम करदे ने बाहर, उह ते कल्ले कल्ले नू मिलदा ना धन, ते इह तुहानू सारिआं नू इक जणे नू उन्ना मिलना सारिआं दा। इक दो जीपो लख होए, लख होए, लख बीस, 20 लख हो गया ते की करी जाणा, कहिंदे की आखीए वाहेगुरु। आ जे राह, ये राह ते आपां चलना पैणा वा, ये तराहे पत पवड़ियां, वह पति परमेश्वर तक लै जूगा राह तुहानू, इको जुग उहदे नाल ईश्वर नाल। आओ होइए पए लिखिए है ना, इको ही लिखना वा, लिख नाम सलाह लिख, ते लिख अंत ना पारा वार, बाबा ये लेखा लिख जान, जिथे लेखा मंगीए तिथे होए सच्चा निशान। बस सच ही उत्थे तुहाडे मन च होवे, होर कुछ ना होवे, उकाला सारा कुछ डिलीट हो जाना। आओ फिर बड़े ध्यान नाल लिखियो, वाह